0: तेरे इश्क में चलकर ये मंजर है, चाहत की फजाओं में मदहोश है,
1: तेरे प्यार में मेरी राहत थी,
0: तेरे इश्क में बहकर ये दिलबर है, तेरे इश्क में चलकर